0: ये खबरें एनएचके वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से नशर की जा रही हैं और अब कुछ मजीद खबरें। जापानी हुकूमत ने 1 जुलाई से गैर मुल्की शहरियों के लिए वीज़ा फीस 5 गुना बढ़ाने का फैसला किया है। हुकूमत ने जुमे के रोज़ काबीना इजलास में इस नज़रसानी की मंजूरी दी। वीज़ा जारी करने की मुल्की फीसों में तकरीबन 50 साल से कोई तब्दीली नहीं की गई थी। सिंगल एंट्री वीज़ा फीस मौजूदा 3,000 येन से बढ़कर 15,000 येन या तकरीबन $93 हो जाएगी। मल्टीपल यानी मुकर्रा मुद्दत में मुतअद्दिद बार जापान आने की इजाज़त के हामिल वीज़ों के इजरा की फीस 6,000 येन से बढ़ाकर 30,000 येन या तकरीबन $186 कर दी जाएगी। वजीर खारजा मोतेगी तोशीमित्सु ने नामानिगारों को बताया कि मौजूदा वीज़ा फीसें 1978 में मुकर्रर की गई थी और कीमतों में इजाफे और गैर मुल्की करेंसी की शराय मुबादला में तब्दीलियों के जवाब में इन पर नजरसानी की गई है। यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की का कहना है कि उनके मुल्क के ड्रोन हमले ने सरहद से 2000 किलोमीटर से ज्यादा दूर रूस की एक तेल तनसीब को निशाना बनाया है। ज़ेलेंस्की ने हफ्ते के रोज एक वीडियो खिताब में कहा कि यह तनसीब मगरबी साइबेरियाई खित्ते ट्यूमेन में वाके है। सदर ने इंकशाफ किया कि हमले में यूक्रेन की दिफाई कंपनी के तैयार करदा अपग्रेडेड ड्रोन शामिल थे। उन्होंने कहा कि बगैर पायलट की ये फजाई गाड़ियां 3,000 किलोमीटर दूर हदफ तक पहुंच सकती हैं। ज़ेलेंस्की ने जोर देकर कहा कि यह हमला यूक्रेन के खिलाफ रूसी हमलों का मुकम्मल जायज जवाब था। उन्होंने इतवार को एक सोशल मीडिया पोस्ट में यह भी ऐलान किया कि यूक्रेन ने जुनूबी खित्ते क्रीमिया में तेल के डिपो समेत आदाफ को निशाना बनाया। रूस ने 2014 में यकतरफा तौर पर इस खित्ते को अपने साथ मिला लिया था। यूक्रेन ने जुमरात को मॉस्को में एक ऑयल रिफाइनरी को भी निशाना बनाया था। जापान की टीम ने मर्दों के फुटबॉल वर्ल्ड कप में अपने ग्रुप मरहले के दूसरे मैच में ट्यूनिस के खिलाफ 0 के मुकाबले में 4 गोल से शानदार फतह हासिल कर ली। हफ्ते के रोज मेक्सिको के मोंटेरी स्टेडियम में शुरू होने वाले ग्रुप एफ के खेल में जापानी टीम, जो आलमी रैंकिंग में 18वें नंबर पर है, उसका मुकाबला 45वें नंबर की ट्यूनिस की टीम से हुआ। 4वें मिनट में नाकामुरा केतो ने बाएं जानिब से गेंद को क्रॉस किया और कामादा दाइची ने उसे अपने बाएं पांव से गोल में डालकर जापान को इब्तदाई बर्तरी दिला दी। 31वें मिनट में उवेदा आयासे ने दरमियानी फासले के एक ताकतवर शॉट के जरिए हाफ टाइम से पहले जापान की बर्तरी को दुगना कर दिया। जापान ने दूसरे हाफ में भी खेल पर गिरफ्त बरकरार रखी। इतो जूनिया ने 69वें मिनट में एक और गोल किया। फिर उवेदा ने 83वें मिनट में दाएं जानिब से क्रॉस पर हेड करके जापान की जानिब से 4th गोल कर दिया। जापान 3 पॉइंट्स हासिल करके पहली बार जीत गया है। इस तरह नेदरलैंड के खिलाफ मैच ड्रॉ होने के बाद जापानी टीम के इस ग्रुप में मजमूई तौर पर 4 पॉइंट्स हो गए हैं।
1: अब आज की अहम खबरों की सुर्खियां समाप्त फरमा लीजिए। कतर और पाकिस्तान के मुताबिक उन मुजाकरात में हौसला अफजा पेशरफ्त हुई है जो उन्होंने अमरीका और ईरान के दरमियान लड़ाई के खात्मे के मुआहदे पर सालिसी के लिए किए हैं। मफाहमत की एक याददाश्त के तहत अमरीका और ईरान ने 60 दिनों के अंदर किसी हतमी मुआहदे तक पहुंचने के लिए मुजाकरात पर इत्तफाक किया है। अला सतह मुजाकरात का पहला दौर स्विट्जरलैंड के शहर बर्गनस्टॉक में इतवार से पीर तक मुनक्किद हुआ। सालिसों के मुश्तरका बयान में कहा गया है कि मुजाकरात मुस्बत और तामीरी माहौल में हुए। इसमें कहा गया है कि फ्रीकैन ने जोहरी मसाइल और ईरान के खिलाफ पाबंदियों पर तवज्जो मरकूज करने वाले अमली ग्रुपों की क्यादत के लिए आला सतह कमेटी के क्याम पर इत्तफाक किया। और जापान की हुक्मरान जमातें पॉलिसी एजेंडे को अमली जामा पहनाने की कोशिशें दुगना करने का इरादा रखती हैं, क्योंकि पार्लिमानी इजलास खत्म होने में वक्त कम रह गया है। जापानी हुकूमत ने 1 जुलाई से गैर मुल्कियों के लिए वीज़ा फीस 5 गुना बढ़ाने का फैसला कर लिया है। खबरें खत्म हुईं।

ये NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11,655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समयानुसार 22 जून सोमवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सग्गू और वरुण तोमर से सुने समाचार। कतर और पाकिस्तान का कहना है कि अमेरिका ईरान संघर्ष समाप्ति समझौते पर उनकी मध्यस्थता से चल रही वार्ता में उत्साहजनक प्रगति हुई है। समझौता ज्ञापन के तहत अमेरिका और ईरान 60 दिनों के भीतर अंतिम समझौते पर पहुंचने के लिए बातचीत करने पर सहमत हुए हैं। उच्च स्तरीय वार्ता का पहला दौर रविवार से सोमवार तक स्विट्जरलैंड के बर्गेनस्टॉक में आयोजित किया गया। मध्यस्थों द्वारा जारी एक संयुक्त वक्तव्य में कहा गया है कि वार्ता सकारात्मक और रचनात्मक माहौल में संपन्न हुई। दस्तावेज में कहा गया है कि दोनों पक्ष परमाणु मुद्दों और ईरान पर प्रतिबंधों से संबंधित कार्यकारी बलों का नेतृत्व करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति के गठन पर सहमत हुए। वक्तव्य में कहा गया है कि समिति ने 60 दिनों के भीतर अंतिम समझौता करने की दिशा में एक कार्य योजना बनाने पर सहमति व्यक्त की है। इसमें यह भी कहा गया है कि एक संचार लाइन की स्थापना की गई है ताकि दुर्घटनाओं और गलतफहमियों से बचते हुए होर्मुज जलडमरू मध्य से व्यावसायिक जहाजों का सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित किया जा सके। वक्तव्य के अनुसार दोनों पक्षों ने लेबनान में सैन्य अभियानों की समाप्ति का पालन सुनिश्चित करने के लिए एक संघर्ष निवारण दल बनाने पर भी सहमति व्यक्त की है, जिसमें दोनों पक्ष और लेबनान शामिल होंगे। इसमें कहा गया है कि विस्तृत वार्ता इस सप्ताह स्विट्जरलैंड में जारी रहेगी। सोमवार को ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, पाकिस्तान और कतर की अथक मध्यस्थता से लेबनान युद्ध को समाप्त करने में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। उन्होंने आगे कहा कि तेल और पेट्रोकेमिकल निर्यात पर छूट दी गई है, समुद्री नाकाबंदी हटा ली गई है, जब्त हुई कुछ परिसंपत्तियां मुक्त कर दी गई हैं और ईरान के लिए एक बड़ी पुनर्निर्माण एवं विकास योजना शुरू की गई है। जापान का मौजूदा संसदीय सत्र समाप्त होने में एक महीने से भी कम समय रह गया है और सत्ताधारी पार्टियां इसी सत्र में प्रस्तावित विधेयक पारित कराने के लिए अपने प्रयास बढ़ाना चाहती हैं। सरकार संसद में शाही घराना कानून में संशोधन का मसौदा प्रस्तुत करने की योजना बना रही है। इसमें शाही घराने के सदस्यों की संख्या सुनिश्चित करने जैसे मुद्दे शामिल किए जाएंगे। मुख्य सत्ताधारी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी LDP और उसकी गठबंधन सहयोगी जापान इनोवेशन पार्टी इन विधेयकों पर संसदीय बहस में तेजी लाना चाहती हैं। दोनों पार्टियां निचले सदन में सांसदों की संख्या कम करने के उद्देश्य से एक और विधेयक भी पेश करना चाहती हैं। ये इन दोनों पार्टियों के बीच हुए गठबंधन समझौते का हिस्सा है। LDP महासचिव सुजुकी शुनइची ने संसद के मौजूदा सत्र में समय की कमी की बात स्वीकारी, लेकिन उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी सत्र की अवधि को बढ़ाए बिना विभिन्न मुद्दों पर आगे बढ़ना चाहती है। विपक्षी दलों के सांसदों का कहना है कि सत्ताधारी दलों को अपनी सुविधा को प्राथमिकता देने की बजाय संसदीय बहस को एहतियात से आगे बढ़ाना चाहिए। मौजूदा सत्र 17 जुलाई को समाप्त होगा।

0: जापान सरकार ने 1 जुलाई से विदेशी नागरिकों के लिए वीज़ा शुल्क में 5 गुना वृद्धि करने का निर्णय लिया है। सरकार ने शुक्रवार को कैबिनेट बैठक में इस संशोधन को मंजूरी दी। जापान के वीज़ा शुल्क में लगभग 50 वर्षों से कोई बदलाव नहीं किया गया था। सिंगल एंट्री वीज़ा शुल्क मौजूदा 3,000 येन से बढ़ाकर 15,000 येन यानी लगभग $93 कर दिया जाएगा। निश्चित अवधि के लिए मल्टीपल एंट्री वीज़ा शुल्क 6,000 येन से बढ़कर 30,000 येन यानी करीब $186 हो जाएगा। विदेश मंत्री मोतेगी तोशिमित्सु ने पत्रकारों को बताया कि मौजूदा वीज़ा शुल्क 1978 में निर्धारित किए गए थे तथा बढ़ती कीमतों और विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में बदलाव के चलते इनकी समीक्षा की गई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की का कहना है कि यूक्रेनी ड्रोन ने रूस में करीब 2,000 किलोमीटर अंदर घुसकर तेल प्रसंस्करण संयंत्र को निशाना बनाया है। ज़ेलेंस्की ने शनिवार को वीडियो संबोधन में कहा कि ये संयंत्र पश्चिमी साइबेरिया के ट्यूमेन क्षेत्र में स्थित है। राष्ट्रपति ने खुलासा किया कि इस हमले में यूक्रेन की एक रक्षा कंपनी द्वारा विकसित उन्नत ड्रोन विमानों का इस्तेमाल किया गया। उन्होंने बताया कि ये ड्रोन 3,000 किलोमीटर दूर तक हमला कर सकते हैं। ज़ेलेंस्की ने बल देते हुए कहा कि यूक्रेन पर रूसी हमलों के जवाब में ये पूरी तरह से न्यायसंगत कार्रवाई थी। इससे पहले रविवार को उन्होंने सोशल मीडिया पर बताया था कि यूक्रेन ने दक्षिणी क्षेत्र क्रीमिया स्थित एक तेल डिपो सहित कई ठिकानों पर हमले किए हैं। गौरतलब है कि रूस ने 2014 में क्रीमिया को एकतरफा रूप से अपने भूभाग में मिला लिया था। यूक्रेन ने बृहस्पतिवार को भी मॉस्को स्थित तेल रिफाइनरी पर हमला किया था। पुरुषों के फुटबॉल विश्व कप मुकाबले में अपने ग्रुप के दूसरे मैच में जापान ने ट्यूनीशिया को 4-0 से हराकर शानदार जीत दर्ज कर दी है। विश्व में 18वीं रैंकिंग वाली जापानी टीम ग्रुप एफ के तहत शनिवार को मेक्सिको के मॉन्टेरी स्टेडियम में 45वीं रैंकिंग वाली ट्यूनीशियाई टीम से भिड़ी। मैच के चौथे मिनट में नाकामुरा केइतो ने बाईं ओर से गेंद को किक किया, जिसे खामादा दाइची ने अपने बाएं पैर से नेट में डालते हुए जापान को शुरुआती बढ़त दिलाई। 31वें मिनट में उएदा आयासे ने एक जोरदार मिड रेंज शॉट लगाकर हाफ टाइम से पहले जापान की बढ़त दुगनी कर दी। दूसरे हाफ में भी जापान ने खेल पर अपनी पकड़ बनाए रखी। इतो जुनिया ने 69वें मिनट में एक और गोल दागा, जिसके बाद 83वें मिनट में उएदा ने दाहिनी ओर से आई गेंद को अपने सिर से मारकर जापान को चौथा गोल दिला दिया। इसके साथ ही जापान ने अपनी पहली जीत दर्ज करते हुए 3 अंक हासिल किए। इससे पहले नीदरलैंड्स के साथ खेला गया मैच ड्रॉ रहा था, जिसके अंक जोड़ने के बाद एफ ग्रुप में जापानी टीम के कुल 4 अंक हो गए हैं।
1: और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कतर और पाकिस्तान का कहना है कि अमेरिका ईरान संघर्ष समाप्ति समझौते पर उनकी मध्यस्थता से चल रही वार्ता में उत्साहजनक प्रगति हुई है। समझौता ज्ञापन के तहत अमेरिका और ईरान 60 दिनों के भीतर अंतिम समझौते पर पहुंचने के लिए बातचीत करने पर सहमत हुए हैं। उच्च स्तरीय वार्ता का पहला दौर रविवार से सोमवार तक स्विट्जरलैंड के बर्गेनस्टॉक में आयोजित किया गया। मध्यस्थों द्वारा जारी एक संयुक्त वक्तव्य में कहा गया है कि वार्ता सकारात्मक और रचनात्मक माहौल में संपन्न हुई। दस्तावेज में कहा गया है कि दोनों पक्ष परमाणु मुद्दों और ईरान पर प्रतिबंधों से संबंधित कार्यकारी बलों का नेतृत्व करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति के गठन पर सहमत हुए। वक्तव्य में कहा गया है कि समिति ने 60 दिनों के भीतर अंतिम समझौता करने की दिशा में एक कार्य योजना बनाने पर सहमति व्यक्त की है।
0: इसी के साथ NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।